0: तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में भीमेश्वर नगरपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिल्लावासी एवं देश विदेश में रहन् भएका संपूर्ण नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं।
1: ईश्वर नारायण मानन्धर प्रमुख, कमला बस्नेत उप प्रमुख एवं भीमेश्वर नगरपालिका परिवार दोलखा।

0: 师傅干嘛呢？
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
2: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: 不干嘛呢？
1: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा

0: श्री माताली घर घरमा बास गरून् यही शुभकामना।
1: प्रणव प्रसाद केसी अध्यक्ष, सृजना खड्का सुवेदी उपाध्यक्ष एवं तामाकोशी गाउँपालिका परिवार जफे दोलखा।

0: हार्दिक शुभकामना।
1: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतीश्वर गांवपालिका वडा नंबर 8 निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी बैतीश्वर गांवपालिका दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करदछु। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस यही शुभकामना।
0: राजकुमार श्रेष्ठ बैतीश्वर गांवपालिका वडा नंबर 8 सीपी गांव दोलखा।

0: मधिरा न्यूनीकरणका लागि रेडियो सन्देश
1: केरेन डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली बेगुचार सिंगटी लामा बगर जाने बाटोको दायाँ पट्टी सम्पर्क नम्बर 9767 39 57 22।

0: विजयदशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में कालिंचो गांवपालिका वडा नंबर 7 निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कालिंचो गांवपालिका वासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहन् भएका समस्त नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानीले हामी सबैको कल्याण गरून्।
1: राम बहादुर पाण्डे ओडा अध्यक्ष, वन्दना मल्ल ओडा सचिव एवं कालिंचो गाउँपालिका ओडा नम्बर 7 परिवार सुनखानी दोलखा।
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज।

0: 师傅干嘛呢？
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मिनकुमर शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
2: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कालिंचो गांवपालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशाकर्मी शिक्षित बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिंचो गांवपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबा रे

0: 师傅干嘛呢？
1: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
1: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली खासी घरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगनमा खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।

0: हार्दिक शुभकामना।
1: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 8 निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी बैतेश्वर गांवपालिका र दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आँगनमा खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: राजकुमार श्रेष्ठ, बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 8, सिटी गाउँ दोलखा।

0: विजया दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में इस कालिंचो गांव पालिका वडा नंबर दुई निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी राजनीतिक कर्मी जनप्रतिनिधि पेशा कर्मी शिक्षक बुद्धिजीवी लगायत समस्त दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका नेपालीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: हेमबहादुर पाण्डे वडा अध्यक्ष कालिम्चो गाउँपालिका वडा नम्बर दुई परिवार बाबरे दोलखा।

0: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में तोनोखारो रामेछाप जिलावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दिदी बहनी एवं देश तथा विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ। खिम्पिक जल विद्युत केन्द्र परिवार तामाकोशी गाउँपालिका किर्नी तुलखा
1: हार्दिक शुभकामना। हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्जकै प्राविधिक लक्ष्मी थामीलाई जन्मदिनको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौ। हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज परिवार चरीकोट चरीख्याङ दोलाखा।

0: 师傅干嘛呢？
1: विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
2: हार्दिक शुभकामना।
0: हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्जकै प्राविधिक लक्ष्मी थामीलाई जन्मदिनको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौं। हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज परिवार चरीकोट चरीख्याङ दोलाखा।
1: विजयादशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर 7 मारभू निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी समस्त गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहनु भएका समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सोनाम शेर्पा ओडा अध्यक्ष एवं गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर 7 ओडा पालिका परिवार मारबू दोलखा।

0: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिक ओडा नंबर एक जुगू निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकवासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भाई समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि और उत्तरोत्तर प्रगति को कामना करद
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेजकिरण ओली वडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दोला।

0: हार्दिक शुभकामना। विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतिसुर गांवपालिका वडा नंबर 8 निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी बैतिसुर गांवपालिका र दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली हरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस यही शुभकामना।
1: राजकुमार श्रेष्ठ बैतिसुर गांवपालिका वडा नंबर 8 सीपी गांव दोलखा।

0: हार्दिक शुभकामना।
1: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतीसुर गांवपालिका वडा नंबर 8 निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी बैतीसुर गांवपालिका र दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली हरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आँगनमा खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: राजकुमार श्रेष्ठ बैतीसुर गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सिपी गाउँ दोलखा।

0: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिक ओडा नंबर एक जुगू निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकवासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भाई समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि और उत्तरोत्तर प्रगति को कामना करद
1: प्रकाश खड्का ओडा अध्यक्ष तेज किरण ओली ओडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर एक परिवार जुगु दोलखा
2: समाचार विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य र कला संस्कृति पर्यटन र विकास का लागि जनपक्षीय आवाज हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

0: हार्दिक शुभकामना।
1: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेनकुमार शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
2: विजयादशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर 7 मारपू निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी समस्त गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहन् भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: सोनाम शेर्पा ओडा अध्यक्ष एवं गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर 7 ओडा पालिका परिवार मारबू दोलखा।

विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक जुगु निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ। प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेजकिरण ओली वडा सचिव एवं गौरशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दोलखा।

0: 师傅干嘛呢？
1: 2010年शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में बैतेश्वर गांवपालिकावासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी दोलखा जिलावासी एवं समस्त नेपाली में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। माता दुर्गा भवानी को कृपाले सबैको घर आंगन में खुशियाली छाओस् यही शुभकामना।
0: मेन्कुवर शिवकोटी वडा अध्यक्ष एवं बैतेश्वर गांवपालिका वडा नंबर 7 परिवार दोलखा।
2: नेपालीहरूको महान चाड़ विजय दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में हाम्रा समस्त विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक एवं देश विदेश में रहनु भएका समस्त नेपाली बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं।

0: विजया दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर एक जुगू निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भाई समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौं।
1: प्रकाश खड्का ओडा अध्यक्ष तेज किरण ओली ओडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका ओडा नंबर एक परिवार जुगु दोला।

0: विजय दशमी तथा शुभ दीपावली को पावन अवसर में कालिंचू गांव पालिक वडा नंबर सात निवासी बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी कालिंचू गांव पालिक वासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहन् भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। माता दुर्गा भवानीले हामी सबैको कल्याण गरुन्।
1: राम बहादुर पाण्डे ओडा अध्यक्ष, वन्दना मल्ल ओडा सचिव एवं कालिंचू गाउँपालिका ओडा नम्बर सात परिवार सुनखानी दुलखा।
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

विशाल श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ में सादर निमंत्रणा। नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा को आयोजना में धर्म जागरण, पितृमोक्ष, सत्संग भवन निर्माण र दैविक प्रकोप विपद कोष स्थापना को पावन उद्देश्य सहित श्रीमद भागवत महापुराण ज्ञान महायज्ञ को भव्य आयोजना हुन गइरहेको छ। यस महायज्ञमा विशिष्ट वक्ता प्रमुख वाचक पण्डित श्री डिलीराम गौतमज्यू को मुखारविन्दबाट सुमधुर संगीतमय भजन कीर्तन र कथा प्रवचन श्रवण गरी तन मन र धन को पुण्य कमाउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनुहोस्। कथा आरम्भ मिति विक्रम सम्वत 2083 साल अश्विन 25 गते आइतबार। सम्पन्न हुने मिति विक्रम सम्वत 2083 साल कार्तिक 2 गते सोमबार। समय दैनिक बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। स्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती। थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापन का लागि सम्पर्क 9852445779, 9849924909, 9844994913, 9141699945, 9844446550। आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।

0: विजयादशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक जुगु निवासी संपूर्ण बुबा आमा दाजुभाई तथा दीदी बहनी गौरीशंकर गांवपालिकावासी दोलखा जिलावासी एवं देश विदेश में रहने भएका समस्त नेपाली हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते सुख शांति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को कामना गर्दछौ।
1: प्रकाश खड्का वडा अध्यक्ष तेज किरण ओली वडा सचिव एवं गौरीशंकर गांवपालिका वडा नंबर एक परिवार जुगु दो